0: Baruchi Zemar, Sol Sangiti, Ustad Lubakshi, Raja Sahib.
1: Sri Shadikor.
0: ये जगह का नाम है सिंधी कस्बे श्री शादीपुर। ये जो दमुला वाला हमारा